क्या तेरे मन में भी श्री राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

जवानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

चर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

साढ़े साती और ढैया का स्मरण हो आता है, जिसके कारण उसका भय निरंतर बढ़ता ही जाता है। किंतु जो शनि की आराधना, पूजा, अर्चना तथा भजन में अनुरक्त व्यक्ति हैं, उन पर शनि की महति कृपा होती रहती है। वे सभी सुख समृद्धि से आनंदित होते हुए शिव धाम को प्राप्त करते हैं। कहते हैं, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जब अपने दसवें ग्यारहवें स्थान पर होता है तो व्यक्ति की उन्नति होती है, किंतु अन्य स्थानों से शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि घातक होती है। अतः शनि सदैव पूजा के योग्य हैं। आओ हम शनि की कृपा प्राप्ति के लिए शनि का ध्यान करें, पूजा करें, भजन और मनन करें। ओम शं शनिश्चराय नमः।

हे भगवन, आई हैव लॉस्ट माई माइंड, माई थॉट्स आर कैरीड अवे विथ सो मच हर्ट्स, आई हैव एक्चुअली लॉस्ट माई सेल्फ ओ प्रभु, आई हैव लॉस्ट द पीस ऑफ माई माइंड, वेयर स्लीप वुड नॉट कम, वेयर आई फील एंग्जाइटी एंड फियर ऑल द टाइम, आई हैव लॉस्ट द मैनरिज्म ऑफ हाउ टू स्पीक टू अदर्स. ओ लॉर्ड, आई हैव लॉस्ट माई जर्नी, आई डो नॉट फील कनेक्टेड एनी मोर प्रभु, माई माइंड हॉन्ट्स मी फॉर ऑल दोज आई हैव लव्ड एंड नॉट मी नॉट बी हियर एनी मोर. हे कृष्ण, हे प्रभु, सो मेनी पीपल हैव गॉन, माई लाइफ इज नॉट द सेम ओ लॉर्ड, आई फील वेरी लोनली एंड डिप्रेस, I feel imprisoned by my own thoughts. Lord, how can I come out from this? What can I do to help myself, O Prabhu? When I feel so sad and uncomfortable, I just don't know what to do, Prabhu. My life's undertaking is not the same as before. And this is a devotee's prayer for those who may feel like this. But my dear friends, whenever you feel like this and you have no control over your mind, always remember you have control of your thoughts. You may not have control of the mind, but you have control of your disturbing thoughts. When these type of thoughts come and want to break you down and makes you feel discouraged and make you feel like you're losing it, just create that paradigm, that shift, and remove those frustrating and distressing thoughts.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: हरि ओम अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य सूक्ष्मेना

0: आपका धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
2: मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा।
3: पंजाब बॉयज समय स्प्लिट हो गए।
1: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
4: वो नहीं,
3: किनो?
5: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

प्रिंसिपल श्री प्रभु रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। महाशक्ति देवी की जय। सो माय डियर डिवोटीज, लेट मी एट दिस टाइम एक्सटेंड टू यू शुभ स्वागतम, ए वेरी स्पेशल वेलकम टू दिस इवनिंग्स इन स्टूडियो कथा। एंड ऑफ कोर्स इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस वंडरफुल इवनिंग, joining in an evening of devotion. So let's bow heads in prayer now as we begin Sri Rama Kahani this evening in Studio Katha. So join with us as we bow in prayer, concentration, meditation. Concentrate now wherever you are, whatever you may be doing. Let's lift our thoughts to the high realm of divine consciousness as we seek guidance from above. Hey Prabhu, Ananda Data, Gyan Humko Deji, Shigra Sare Durguno Se Prabhu, Dura Hame Se Kiji. You are the light that knows no boundaries. You are the light that shines in the sun, in the moon, and in the fire. Prabhu, मैं आपको बारंबार नमस्कार है। Seeking your guidance, we bow again and again.

जिनको आदि नहीं अंत नहीं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव जी को मैं आपको बारंबार नमस्कार है। शिव जी देहु मोहि परदान।

देवी माँ शक्ति महिमा तुम्हारी है निराली, हे जगदम्बे मैया बिनती हमारी खाली न जाए। देवी टू यू वी बाउ इन एडोरेशन्स।